0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 647702 V23
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है, चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोज, ते हां पनीर दी भुर्जी बिल्कुल ना भूलिया जे। लोकेटेड ने 7171 टोरब्रम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111 तंदूरी बॉयज।
3: मैनू पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाली सोहनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस का हो जाओ शिकार, तो कौन भरेगा तुहाडे घर दी मॉर्गेज, कित्थों आएगी इनकम, किवें चलेगी जिंदगी दी गड्डी अगे। अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ, कॉल करो उमरप्रीत चावला नू, जिन्हां तों मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकदे हो, ते नाल ही विजिटर वीजा इंश्योरेंस, सुपर वीजा, ट्रैवल इंश्योरेंस, RESP ते होर इन्वेस्टमेंट्स लई। हुणे करो कॉल उमरप्रीत चावला नू 6474461616। उमरप्रीत चावला।

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6747702 V23
1: License number 10394।

जमनी पार सब को सवारा जमशी पार है तारे हमारा जमनी पार सब जगत बनायो मेरी कैद जल चली उपजायो आज अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझे हो हमारा जमशी पार किसी को हमारे सब जाति आप सवारी सिंह को

0: नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता
1: यहाँ से आपको ठाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 & 10 ब्रैम्पटन टेलीफोन 9057999400

श्री आदित्य कवत्र महामंत्रस्य अगस्त्यो भगवान ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्यो देव

0: तु रक्तमाने च चतुर्भुजो मे दयम् मुक्षिम् रोगापारक कगे भूमिजः
1: सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय अली मदद। और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार, मैं हूं आपकी होस्ट मीरा। तो आपके लिए बहुत बढ़िया सा प्रोग्राम है। आपके लिए लेबर डे लॉन्ग वीकेंड चल रहा है, तो आपको जितने भी घूमना है फिरना है, बहुत सारे काम भी करने हैं, तो आप जरूर अपने पूरे काम करिएगा और साथ में अपना एंजॉयमेंट भी करिएगा। बट डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स बिजी हो गए हैं, बिजी हैं, बच्चों की तैयारी कर रहे हैं स्कूल जाने की। तो सभी के बच्चों को लिए शुभ इच्छाएं हम देते हैं कि उनके बच्चे तरक्की करें, पढ़ाई करें और अच्छे अच्छे मार्क लेके आए। यूनिवर्सिटी जिनके बच्चे जा रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई। जिनके बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे पहली बार स्कूल जा रहे हैं उनको भी बहुत सारी बधाई।
2: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दिया सारी आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और विश्वास कर असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल जो G26 100% कैनेडियन मेड स्वीट्स। ऑल तीन लोकेशन तो सर्व करते ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्गन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1135।
1: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है डॉक्टर सार में। तो अब आपने अगर किसी किस्म का फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर अपने घर में लेके आना है और साथ में आपको बढ़िया टीवी लेना है, लेटेस्ट किचन की गैजेट चाहिए, तो आउटडोर फर्नीचर चाहिए, आउटडोर बारबेक्यू चाहिए, ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो और जानकारी के लिए आप topchoiceelectronics.com पर जाइए और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए आप उनको कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, 905-709-0045 टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। हैमिल्टन वासियों, की तुसी अपनी अगली कार लब रहे हो ता अज ही पहुंचो बीबीटी रॉक क्लिफ ऑटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हैमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5,000 तों लैके $1,00,000 तक। ते फाइनेंस दा चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੇ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੋਸੀਬਲ ਰੇਟ ਅਤੇ ਡੀਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। 4 ਟਾਇਰਸ ਦਾ ਸੈੱਟ ਸਿਰਫ 299 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ AM530 ਲਿਸਨਰਸ ਲਈ ਖਾਸ ਆਫਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ BBT ਰੋਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ AM530 ਤੇ ਮੀਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਹੀਕਲ ਪਰਚੇਸ ਤੇ $500 ਆਫ। ਜੀ ਹਾਂ, $500 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੱਚਤ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ BBT ਰੌਕ ਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ। ਕਾਲ ਕਰੋ 365-384-3840 365-384-3840। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ 365-384-3840 365-384-3840 BBT ਰੌਕ ਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ। ਲੋਕਲ ਸਰਵਿਸ, ਗ੍ਰੇਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੇਟ ਡੀਲਸ। BBT रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन। जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो अब अगर आपने मूव है तो HK मूवर्स को आप कॉल कीजिएगा। HK मूवर्स कनाडा भर में आपको मदद करते हैं मूव होने में। तो उनकी जो लोकेशन है वो आपके लिए ब्रैम्पटन में है। तो किसी तरह की भी आपको मूविंग करनी है, तो आज ही उनको कॉल करिएगा 416-524-8404 आपकी मूव होने की जो समस्या है वो एकदम उनको कॉल करने से हल हो जाती है, क्योंकि मूव होना कोई आसान चीज नहीं होती है, किसी के लिए भी बहुत बहुत सारे काम होते हैं मूविंग में। तो आपका जो एक बार ट्रक बुक करोगे तो बस फिर आपका जो मूव होने का काम है वो समझ लो हो गया। एचके मूवर्स 416-524-6704। अगर आप हैमिल्टन में रहते हो, आपको गाड़ी ठीक करानी है, उबर की अथॉरिटी चाहिए, या फिर उबर की आपको किसी तरह की भी सर्टिफिकेशन करवानी है, तो आप योगीश ऑटो जो कि 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट डाउनटाउन स्टोनी क्रीक में मौजूद है, तो आपको बहुत बढ़िया सर्विस देंगे। कार के टायर चाहिए, कार को विंटराइज करवाना है, ट्यून अप करवाना है, तो आप योगीश ऑटो सेंटर में जाइए 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन। तो और जानकारी के लिए आप योगीश ऑटो सेंटर के पास अपनी 70-80 टैक्सीज हैं। अगर आप हैमिल्टन में टैक्सी चलाना चाहते हो तो आप योगीश ऑटो सेंटर वालों को कॉल करिए, मिस्टर गिल को 905-547-6464 पे आप योगीश ऑटो सेंटर को कॉल कर सकते हो। अगर आप लंदन के आसपास रहते हो, आपके लिए बहुत ही खुशी की खबर है कि भी आपको आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो खुल चुका है लंदन में, तो वहाँ पे आपकी इमेज ऐसा बना देते हैं, तो mastercollisiondepot.com पर जाकर आप उनकी और जानकारी ले सकते हो। तो अब अगर आपने किसी तरह की भी, आप हैमिल्टन के इलाके में रहते हो, आपको किसी तरह की भी आपने गाड़ी की विंटराइज ट्यून अप करवानी है, तो आप योगीश ऑटो सेंटर जाइए। अगर आपने अथॉरिटीज करवानी है, उबर टैक्सी की आपने टैक्सी ली है, तो वो सारी सर्विसेज आपको योगीश ऑटो सेंटर 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट आपके लिए स्टोनी क्रीक डाउनटाउन में मौजूद है। और जानकारी के लिए आप मिस्टर गिल को कॉल कर सकते हो योगीश ऑटो सेंटर, तो 905-547-6464 योगीश ऑटो सेंटर हैमिल्टन। तो अगर आपने किसी किस्म की भी आपको ट्रक रिपेयर करवानी हो, तो आप जा सकते हो बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर पे, आप जाइए, आपको बहुत बढ़िया सर्विस मिलेगा। तो आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे, तो एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, आप जरूर एंजॉय कीजिएगा, सुनिएगा। और आपके लिए ये जो लॉन्ग वीकेंड है बड़ा स्पेशल है, और बहुत सारी शुभकामनाएं, और बच्चों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। ये जो गाने हैं ये बहुत 1962 फिल्म की आरती, तो रफी साहब का गाया हुआ गीत है।
3: अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारा

0: ना तो उम्मीद रखती हूँ आपको ये गाना बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो आगे भी चलकर आपको बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनाने वाले हैं हम। तो पहले आपको बता दें कि अगर आप अपने घर में अपने घर खरीदा है या फिर बेसमेंट बनवाई है, आपको फ्रिज चाहिए, स्टोव चाहिए, तो आप
1: But it's also a whole event just to get there. Parking's an event. Ride shares boost prices because they know event to hold it. But here's the thing.
0: हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। और अगर आपने फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर लेना है, आपको बेसमेंट बनवाई है, आपने जब घर लिया है, या फिर आपको नया लेटेस्ट टीवी चाहिए, लेटेस्ट सामान आपको मिलेगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है। तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर उनका जो लॉन्ग वीकेंड स्पेशल्स हैं वो आप देखिएगा और फिर आप अपने ऑर्डर बुक करिएगा। ऑर्डर बुक करने के लिए 905-700-0045 पर कॉल करिए, 905-799-0045 पे कॉल करिएगा। तो अगर आपने कार ट्यून अप करवानी है या फिर आपने हैमिल्टन में टैक्सी चलानी है तो योगी ऑटो सेंटर वालों के पास 70-80 अपनी टैक्सी है, तो आप उनको कॉल कीजिए। आपने उबर की अथॉरिटीज उनकी सर्टिफिकेशन करवानी है तो वो भी आप मिस्टर गिल को कॉल करिएगा योगी ऑटो सेंटर पे 905-547-6464। तो अब आपके लिए कभी खुशी कभी गम फिल्म का ये गीत आपके लिए जो ट्रैक है वो पेश कर रहे हैं। उम्मीद रखती हूँ कि आप

0: की दुआएं कहे, तेरी जोड़ी सलाम कहे।
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है गैस संसार में, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो ये जो लॉन्ग वीकेंड, लेबर लॉन्ग वीकेंड होता है, ये सिर्फ स्कूल जाने के शुरुआत नहीं होती है। इसमें अभी जन्माष्टमी थी, सभी मंदिरों में बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी

बात है, बढ़िया सा आपका मनोरंजन करते रहेंगे। और ये कृष्ण कन्हैया का जन्मदिन है तो राधा का गाना भी जरूर लगाएंगे। जी हाँ, तो वो वाला गाना भी आपको जरूर सुनाया जाएगा। पर पहले आपको बता दें कि अगर आपने फ्रिज, स्टोव, वॉशर ड्रायर या बढ़िया क्वालिटी का आपने टेलीविजन लेना है तो ये सारा सामान आपको मिलता है टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स के, बहुत बढ़िया रेट में मिलता है। तो आप वहाँ पे जाइए और उनकी स्पेशल्स का, जो लेबर डे स्पेशल है, लॉन्ग वीकेंड स्पेशल है, उनका फायदा उठाइएगा। तो ये जो आपके लिए है, तो आपको अगर बहुत बढ़िया सी आपको टीवी लेनी है या फिर आपने आउटडोर फर्नीचर लेना है, घर में फर्नीचर लेना है, बढ़िया क्वालिटी बढ़िया प्राइस, तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। एक लोकेशन उनकी इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड ब्रैम्पटन में है, दूसरी लोकेशन ग्वाल्फ में। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए, उनके स्पेशल देखिए, फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-700-0045 पर कॉल कीजिए। अगर आप मूव होने वाले हैं HK मूवर्स को कॉल कीजिए 416-524-7046-524-6704। और लंदन वासियों के लिए बड़ी खुशी की खबर है कि आपके लिए आपके शहर में मास्टर कोलिजन डिपो खुल चुका है गोर रोड पे। वहाँ पे जाइए, अपनी कार वैन ट्रक का कोई भी कोलिजन का काम करवाना है करवाइए, तो आप को बहुत बढ़िया आपको काम करके देंगे। तो मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाइए और उनके बारे में और जानकारी लीजिए।

रिक्वेस्ट है अपनी सुरक्षा रखिए, अपने परिवारों के साथ बड़ा अच्छा। बहुत सारे लोग पिकनिक कर रहे हैं, बहुत आप तो अब आपके लिए एक और बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाऊंगी। तो ये जो गाना है ये भी राधा वाला है, तो कृष्णा के लिए ही हम ऐसे गीत आपको सुनाएंगे थोड़े से। तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है, मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। हैव ए सेफ वीकेंड एंड अ ग्रेट वीकेंड, प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, और खुद भी एंजॉय कीजिए, अपने आसपास वालों को भी एंजॉय करवाइएगा, उनकी खुशी का भी जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप अपने आसपास के लोगों की खुशी का ध्यान रखेंगे तो वो सब कितने सारे लोग आपकी खुशी का भी ध्यान रखेंगे। इसी विचार के साथ नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी स्वाद दा पला है वंडरफुल गीत देख।

0: डिपेंडिंग ऑन देयर फैमिली साइज, किसी अगर बच्चे ज्यादा है, जैसे फैमिली ऑफ फोर का उनको 45 तक आया, जो फैमिली ऑफ टू है थ्री उनको 30 से 35 तक आया पहली किस्त।
1: क्या बात है, क्या बात है यार, पैसे से पैसे आ रहे हैं ससुरांश नू। तुसी भी सारे कॉल करो अगर तुसी चाहुंदे हो कि थोड़े अकाउंट चाहे पैसे डिगण आके। ससुरांश, बहुत सारे लोग एक कोर्स कर लेंदे आ ते दूजा कोर्स भी थोड़े कोल फिर करदे आ, क्यों?
0: हाँ जी, उसमें ये बात बिल्कुल ठीक है कि लाइक आप देखें कि हमारी फीस सबसे कम है, ट्रांसपेरेंट है, काम होने के बाद है, कोई इसमें नकली डॉक्यूमेंट नहीं लगता, साफ काम है, 8 साल से कर रहे हैं, जिनको पता है, चाहे वो हमारे थ्रू कर रहे हैं किसी और के थ्रू कर रहे हैं, पहला कोर्स है कर चुके हैं, उनको पहले से प्रोसेस पता है हाउ इट वर्क्स, कि सब कुछ साफ है, तो राइट अवे सेकेंड कोर्स के लिए भी रिटेन हो जाते हैं। आप लोग भी पीछे ना रहिए, पीआर सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन है, स्किल डेवलप करें, आसान से कोर्सेज करें, कोर्सेज में आजकल टीचर नहीं है, मतलब इट्स अ सेल्फ स्टडी बेस्ड मॉडल। आपको फंडिंग उतनी ही आती है, 50,000 से $1,70,000 0% ब्याज पे, बिना गारंटी के, गवर्नमेंट से, बैंक से नहीं।
1: वेरी गुड। सो सराज का फोन नंबर एक क्विक है, तो याद रखो 4372643175 4374 2641 3175 ते तुसी सराश दे नाल जरूर गल करो। सराश, फंडिंग जिहड़ी आउंदी है ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਵੀ ਯੂ ਨੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ 4 ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ 2 ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ?
0: ਹਾਂਜੀ, ਮੇਨ ਜੋ ਇਸਮੇ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਵੋ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਈਜ਼। ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਕਿਤਨੇ ਲਾਈਕ ਕਲਾਇੰਟਸ, ਆਜ ਵੀ ਲਾਈਕ 3 ਕਲਾਇੰਟਸ ਰਿਟੇਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਵੋ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਲਾਈਕ 4 ਜਾਂ 5 ਹੀ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਆਪਕੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਖਰਚੇ ਆਪਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, तो आपको गवर्नमेंट लिविंग एक्सपेंसेस के लिए पैसे दे रही है, कहीं भी उस पैसे को खर्च कर सकते हैं, तो इसलिए अगर फैमिली ऑफ टू है तो लाइक आपको मान के चले $80,000 बनता है, अगर फैमिली ऑफ फाइव है तो 1,70,000 आपके खाते में आता है। पीछे ना रहिए, गारंटी फ्री लोन है, स्ट्रेस फ्री लोन है, इससे बढ़िया लोन एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इसकी पहली किस्त भी 2.5 साल बाद स्टार्ट है, कहीं भी वरतो इस पैसे को।
1: हाँ, यही मैं पूछ रहा सी कि ये जिहड़ा लोन है, लोन सुन के बहुत सारे लोग डर जांदे हैं, बट की इंटरेस्ट रेट है इसका?
0: हाँ जी, शुरू में 0% है 2 साल, और 2.5 साल बाद जब पहली किस्त स्टार्ट होती है तो 2.5% ब्याज है, साल का, महीने का 2.5% नहीं है। ना ना ना, गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट आपको छीलना नहीं चाहती, ना हम छीलना चाहते हैं आपको, हम इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कोई चलाकी नहीं है इसके अंदर। 2.5% साल का ब्याज है, $1,00,000 पे $200 ब्याज है, तो इसलिए आप पीछे ना रहिए, कॉल अभी करें, ऑफिस आए, प्रॉपर ऑफिस है 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड पे, आप कल भी ऑफिस आ सकते हैं, हमारा बैच नेक्स्ट वीक में बैच स्टार्ट है, पीछे ना रहिए, एनरोल कराइए।
1: नंबर है 4372643175 4372643175 4374 2641 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰਾਂਸ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ।
0: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ,
1: ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਆਪਣਾ 905-673-3337। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ।

वाह भी वाह, क्या बात है। नहीं रीसा, बाबा साहब भी कमाल ही है। समर दे अखीरले दिन ने आखिरी दिन कुछ फन करना ना। टी डॉट वाटर टैक्सी है, ये प्राइवेट पानी वाली टैक्सी है, ये थोनू सेंटर आइलैंड लेके जाती है। फेरी ते चढ़ोगे, बंदे ते बंदा चढ़िया हुंदा यार, मैं नहीं प्रेफर करता परसनली। मैनू आराम नाल जाओ यार, नाले तुसी व्यू देखी जाओ वधिया, तुसी चार पांच परिवार दे मैंबर आए धन्ने जे मैं थोड़ी आपदी प्राइवेट टैक्सी हुंदी है। सुनो, जे तुसी जाना होवे किस भी टोरंटो आइलैंड्स नू, सेंटर आइलैंड, वार्ड्स आइलैंड या हैनलिन्स पॉइंट, तां लैके जाओ टी डॉट वाटर टैक्सी। फेरी दियां दो तीन घंटे दियां लाइनअप्स तो बचो अते लैके जाओ अपनी प्राइवेट टी डॉट वाटर टैक्सी। टी डॉट वाटर टैक्सी दी डॉक लोकेटेड है 1 क्वींस की ईस्ट ते, यंग अते क्वींस की ईस्ट दे बिल्कुल कॉर्नर ते। मामूली जिहा रेट अते आराम नाल राजिआं वांग जाओ अपनी प्राइवेट वाटर टैक्सी ते। टी डॉट वाटर टैक्सी 6473708368। इन्हां दी डॉक ते पार्किंग भी अवेलेबल है, उत्थों तुसी अपनी टिकट्स भी बाय कर सकदे हो कैश या क्रेडिट कार्ड दे नाल। टी डॉट वाटर टैक्सी दी एप भी डाउनलोड करो। टी डॉट वाटर टैक्सी, द बेस्ट वे टू गो टू सेंटर आइलैंड। वाह भी वाह, द बेस्ट वे टू गो टू सेंटर आइलैंड। जरूर जरूर जरूर तुसी ट्राई करो, तुसी आप कहोगे नवी है तां है ही कमाल दी चीज है, सारे नूं ट्राई करनी चाहीदी है। ते इक मैं थोनू आ मैसेज दवां, जदों किसी दी नजर धुंधली होनी शुरू हो जावे, जिंदगी दे बहुत पल हौली हौली खो जांदे ने। गड्डी चलाउणी मुश्किल, टीवी देखना औखा, ते अपने प्यारियां दे चेहरे भी साफ नजर नहीं आउंदे। इस लई बहुत लोकां ने LAL लाइट एडजस्टेबल लेंस सर्जरी चुनी है। एह प्रीमियम कैटरैक्ट सर्जरी माड़ी नजर नूं भी कस्टमाइज कर दिंदी है, बिल्कुल टेलर मेड विजन पेशेंट दी लाइफ दे हिसाब दे नाल। कई पेशेंट्स कहिंदे ने कि लाइट एडजस्टेबल लेंस सर्जरी तो बाद मेरी दुनिया फिर साफ होगी, मैं फिर तो नॉर्मल लाइफ जी रहा, ड्राइविंग तो लेके रीडिंग तक क्लैरिटी वापस आ जाती है। क्लिनिक दे सर्जन्स अते स्टाफ हर कदम ते गाइडेंस, कंफर्ट अते केयर दिंदे ने, ताकि पूरी जर्नी सेफ, स्मूथ अते कॉन्फिडेंस दे नाल होवे। जे तुसी या थोड़े लव्ड वंस कैटरैक्ट्स दे नाल परेशान हो, ता अज ही कॉल करो लूमिया। ऑफिसेज इन वॉन, डाउनटाउन टोरंटो एंड बेरी। डॉक्टर संगेड़ा अते डॉक्टर खान थोड़ी बोली पंजाबी, उर्दू अते हिंदी बोल देने। होर जानकारी लई ईमेल करो punjabi@lumia.io, punjabi@lumea.io।

0: तुझ की चाल जैसे तेरा कोई एक बार जब तूने सुना कान पास तेरा ही दोबारा तेरी नाम पे हारू कहा यार की दृष्टि को तेरा चढ़ की गीत मैं शरण तेरी आप हाथ दे के मुबारक शरण तोर मोह सबाई दृष्टि को तेरे बचा
1: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 एंड 10 ब्रैम्पटन टेलीफोन 905-799-9999
2: रात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता
1: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 एंड 10 ब्रैम्पटन टेलीफोन 905-799-9400

कायै वचत ॐ ह्रैं कवचाय हुम् ॐ ह्रौं नेत्रत्रयाय वचत ॐ ह्राः अस्त्राय वद पद ध्यानम् नमामि वैरवहं वहन्तं शैलं परिशृङ्करमालयाभ्यं दधानमाख्यामाद सुवर्णभरणं बदीचरत्कुण्डलमाञ्जनेयम् नमो भगवते विचित्रवीर हरमते प्रलयकालानन प्रभाज्वलत्वतापवस्त्रदेहाय अञ्जनीर्वन्भुत प्रकट विक्रम वीर दैत्य दानव यक्ष राक्षस ग्रह बन्धनाय भूत ग्रह प्रिय शाकिनी ग्रह दाकिनी ग्रह काकिनी ग्रह कामिनी ग्रह ब्रह्म ग्रह ब्रह्म राक्षस ग्रह चोर ग्रह बन्धनाय एहि एहि आगच्छागच्छ आवेशयावेशय मम हृदयं प्रवेशय प्रवेशय स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर सत्यं कथय कथय व्याघ्रमुखं बन्धय बन्धय सर्वमुखं बन्धय बन्धय राजमुखं बन्धय बन्धय समामुखं बन्धय बन्धय शत्रुमुखं बन्धय बन्धय सर्वमुखं बन्धय बन्धय लंका प्रसाद भञ्जन सर्वजनं मे वशमानय वशमानय श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सर्वानाकर्षय आकर्षय शत्रून्मर्दय मर्दय मारय मारय चूर्णय चूर्णय खे खे खे श्रीरामचन्द्राज्ञया प्रज्ञा मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु मम शत्रून्भस्मि कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रैं ह्रों ह्रः फट् श्री विचित्रवीर हनुमते मम सर्वशत्रून्भस्मी कुरु कुरु हन हन हूं फट् स्वाहा एकादश शतवारं जपित्वा सर्वशत्रून् वशमानयति नान्यथा इति श्री विचित्रवीर हनुमन्माला मन्त्राः सम्पूर्णम्।

0: पातु भौमतः भुजौ तु रक्तमानि च चतुर्भुजो मे दयं मुक्षिं रोगापहारक कके भूमिजः
1: सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हम या अली मदद। और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार, मैं हूं आपकी होस्ट मीरा। तो आपके लिए बहुत बढ़िया सा प्रोग्राम है। आपके लिए लेबर डे लॉन्ग वीकेंड चल रहा है, तो आपको जितने भी घूमना है फिरना है, बहुत सारे काम भी करने हैं, तो आप जरूर अपने पूरे काम करिएगा और साथ में अपना एंजॉयमेंट भी करिएगा। बट डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स बिजी हो गए हैं, बिजी हैं, बच्चों की तैयारी कर रहे हैं स्कूल जाने की। तो सभी के बच्चों को लिए शुभ इच्छाएं हम देते हैं कि उनके बच्चे तरक्की करें, पढ़ाई करें और अच्छे अच्छे मार्क लेके आए। यूनिवर्सिटी जिनके बच्चे जा रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई। जिनके बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे पहली बार स्कूल जा रहे हैं उनको भी बहुत सारी बधाई।
2: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जलवाई विश्वास कर असि लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल G26 100% कैनेडियन मेड स्वीट्स। और तीन लोकेशन तो सर्व करते ने, 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्ड्रन रोड, ईटोबिको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1150-2131-1165।
1: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है डॉक्टर सार में। तो अब आपने अगर किसी किस्म का फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर अपने घर में लेके आना है और साथ में आपको बढ़िया टीवी लेना है, लेटेस्ट किचन की गैजेट चाहिए, तो आउटडोर फर्नीचर चाहिए, आउटडोर बारबेक्यू चाहिए, ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड में मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो और जानकारी के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए आप उनको कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, 905-709-0045 टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। हैमिल्टन वासियो, की तुसी अपनी अगली कार लब रहे हो ता अज ही पहुंचो BBT रॉक क्लिफ ऑटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हैमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5000 तों लैके $1,00,000 तक। ते फाइनेंस दा चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तो शुरू, अते हर तरह दे क्रेडिट वाले कस्टमर्स लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हन। जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहंदे हो तां साडे कोल आओ, साडी लोकल टीम तुहाडी सिचुएशन दे हिसाब नाल तुहाडे लई सब तों वधिया पॉसिबल रेट अते डील लब्भण लई पूरी कोशिश करेगी। ते जे तुहानूं नवे टायर्स दी लोड है तां ओह वी मिलणगे। चार टायर्स दा सेट सिर्फ 299 तो शुरू। हुण सुनो AM530 लिसनर्स लई खास ऑफर, जदों तुसी BBT रोकलिफ ऑटो हैमिल्टन आओ, सानू सिर्फ ए दसो, मैं AM530 ते मीरा शर्मा तो तुहाडे बारे सुनिया है, अते तुहानूं मिलेगी तुहाडी व्हीकल परचेस ते $500 ऑफ। जी हां, $500 दी सिद्धी बचत। तां फिर देर किस गल दी, अज ही विजिट करो BBT रॉक क्लिफ ऑटो हैमिल्टन। कॉल करो 365-384-3840 365-384-3840। दोबारा सुनो 365-384-3840 365-384-3840 BBT रॉक क्लिफ ऑटो हैमिल्टन। लोकल सर्विस, ग्रेट सिलेक्शन, ग्रेट डील्स। BBT रॉकलिफ ऑटो हैमिल्टन। जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो अब अगर आपने मूव है तो HK मूवर्स को आप कॉल कीजिएगा। HK मूवर्स कनाडा भर में आपको मदद करते हैं मूव होने में। तो उनकी जो लोकेशन है वो आपके लिए ब्रैम्पटन में है। तो किसी तरह की भी आपको मूविंग करनी है, तो आज ही उनको कॉल करिएगा 416-524-4416-524-6704 HK Movers, आपकी मूव होने की जो समस्या है वो एकदम उनको कॉल करने से हल हो जाती है, क्योंकि मूव होना कोई आसान चीज नहीं होती है, किसी के लिए भी बहुत बहुत सारे काम होते हैं मूविंग में। तो आपका जो एक बार आप ट्रक बुक करोगे तो बस फिर आपका जो मूव होने का काम है वो समझ लो हो गया। HK Movers 416-524-6704। अगर आप हैमिल्टन में रहते हो, आपको गाड़ी ठीक करानी है, उबर की अथॉरिटी चाहिए, या फिर उबर की आपको किसी तरह की भी सर्टिफिकेशन करवानी है, तो आप योगेश ऑटो जो कि 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट डाउनटाउन स्टोनी क्रीक में मौजूद है, तो आपको बहुत बढ़िया सर्विस देंगे। कार के टायर चाहिए, कार को विंटराइज करवाना है, ट्यूनअप करवाना है, तो आप योगी ऑटो सेंटर में जाइए 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन। तो और जानकारी के लिए आप योगी ऑटो सेंटर के पास अपनी 70 से 80 टैक्सीज हैं। अगर आप हैमिल्टन में टैक्सी चलाना चाहते हो तो आप योगी ऑटो सेंटर वालों को कॉल करिए, मिस्टर गिल को 905-547-6464 पे आप योगी ऑटो सेंटर को कॉल कर सकते हो। अगर आप लंदन के आसपास रहते हो, आपके लिए बहुत ही खुशी की खबर है कि भी आपको आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो खुल चुका है लंदन में, तो वहां पे आपकी मेज जैसा बना देते हैं। तो masterkollisiondepot.com पर जाकर आप उनकी और जानकारी ले सकते हो। तो अब अगर आपने किसी तरह की भी आप हैमिल्टन के इलाके में रहते हो, आपको किसी तरह की भी आपने गाड़ी की विंटराइज ट्यून अप करवानी है, तो आप योगी ऑटो सेंटर जाइए। अगर आपने अथॉरिटीज करवानी है, उबर टैक्सी की आपने टैक्सी ली है, तो वो सारी सर्विसेज आपको योगी ऑटो सेंटर 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट आपके लिए स्टोनी क्रीक डाउनटाउन में मौजूद है। और जानकारी के लिए आप मिस्टर गिल को कॉल कर सकते हो योगी ऑटो सेंटर, तो 905-547-6464 योगी ऑटो सेंटर हैमिल्टन। तो अगर आपने किसी किस्म की भी आपको ट्रक रिपेयर करवानी हो, तो आप जा सकते हो बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर पे। आप जाइए, आपको बहुत बढ़िया सर्विस मिले। 905-6 तो आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे, तो एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, आप जरूर एंजॉय कीजिएगा, सुनिएगा। और आपके लिए ये जो लॉन्ग वीकेंड है बड़ा स्पेशल है, और सारी शुभकामनाएं और बच्चों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। ये जो गाने हैं ये बहुत 1962 फिल्म थी आरती, तो रफी साहब का गाया हुआ गीत है।
3: अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शब्दों।

0: यहाँ, तो उम्मीद रखते हूँ आपको ये गाना बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो आगे भी चलकर आपको बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनाने वाले हैं हम। तो पहले आपको बता दें कि अगर आप अपने घर में अपने घर खरीदा है, जहाँ पर बेसमेंट बनवाई है, आपको फ्रिज चाहिए, स्टोव चाहिए, तो आप अगर
1: But it's also a whole event just to get there. Parking's an event. Ride shares boost prices because they know events a whole event. But here's the thing.
0: एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। और अगर आपने फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर लेना है, आपको बेसमेंट बनवाई है, आपने जब घर लिया है, या फिर आपको नया लेटेस्ट टीवी चाहिए, लेटेस्ट के साथ सामान आपको मिलेगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है। तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर उनका जो लॉन्ग वीकेंड स्पेशल्स हैं वो आप देखिएगा और फिर आप अपने ऑर्डर बुक करिएगा। ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल करिए, 905-799-0045 पे कॉल करिएगा। तो अगर आपने कार ट्यून अप करवानी है, या फिर आपने हैमिल्टन में टैक्सी चलानी है, तो योगी ऑटो सेंटर वालों के पास 70-80 अपनी टैक्सी है, तो आप उनको कॉल कीजिए। आपने उबर की अथॉरिटीज उनकी सर्टिफिकेशन करवानी है, तो वो भी आप मिस्टर गिल को कॉल करिएगा योगी ऑटो सेंटर पे 905-547-6464। तो अब आपके लिए कभी खुशी कभी गम फिल्म का ये गीत आपके लिए जो ट्रैक है वो पेश कर रहे हैं। उम्मीद रखती हूँ कि आपको

0: की दुआ ये कहे तेरी जोड़ी सलामत रहे।
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है गैस संसार में और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो ये जो लॉन्ग वीकेंड लेबर लॉन्ग वीकेंड होता है ये सिर्फ स्कूल जाने के शुरुआत नहीं होती है, इसमें अभी जन्माष्टमी थी, सभी मंदिरों में बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई गई और अभी भी मंदिरों में लोग जा रहे हैं, झूला झूला रहे हैं कृष्ण कन्हैया को, बेबी कृष्णा को। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि शादियां बहुत होती हैं लेबर डे लॉन्ग वीकेंड में, बहुत सारी है शादियां होंगी इस लॉन्ग वीकेंड में, शादियों में अटेंड करेंगे। तो तभी मैंने ये जो गाना लगाया था, बड़ा फेस्टिव सा गाना है, तो इसलिए मैंने ये वाला गाना आपके लिए लगाया है। तो उम्मीद रखती हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। इसी तरह हम जितनी देर भी हमारा साथ है बढ़िया सा आपका मनोरंजन करते रहेंगे। और ये कृष्ण कन्हैया का जन्मदिन है तो राधा का गाना भी जरूर लगाएंगे। जी हाँ, तो वो वाला गाना भी आपको जरूर सुनाया जाएगा। पर पहले आपको बता दें कि अगर आपने फ्रिज स्टोव वॉशर ड्रायर या बढ़िया क्वालिटी का आपने टेलीविजन लेना है तो ये सारा सामान आपको मिलता है टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स के, बहुत बढ़िया रेट में मिलता है। तो आप वहाँ पे जाइए और उनकी स्पेशल्स का, जो लेबर डे स्पेशल है, लॉन्ग वीकेंड स्पेशल है, उनका फायदा उठाइएगा। तो ये जो आपके लिए है, तो आपको अगर बहुत बढ़िया सी आपको टीवी लेनी है या फिर आपने आउटडोर फर्नीचर लेना है, घर में फर्नीचर लेना है, बढ़िया क्वालिटी बढ़िया प्राइस, तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। एक लोकेशन उनकी इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड ब्रैम्पटन में है, दूसरी लोकेशन ग्वाल्फ में। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए, उनकी स्पेशल देखिए, फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-700-0045 पर कॉल कीजिए। अगर आप मूव होने वाले हैं HK मूवर्स को कॉल कीजिए 416-524-7046-524-6704। और लंदन वासियों के लिए बड़ी खुशी की खबर है कि आपके लिए आपके शहर में मास्टर कोलिजन डिपो खुल चुका है गोर रोड पे, वहाँ पे जाइए, अपनी कार वैन ट्रक का कोई भी कोलिजन का काम करवाना है करवाइए, तो आप को बहुत बढ़िया आपको काम करके देंगे। तो मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाइए और उनके बारे में और जानकारी लीजिए।

इसमें फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। और जैसे मैंने कहा कि आपका लॉन्ग वीकेंड है, साथ में अपना ख्याल प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी सुरक्षा रखिए, अपने परिवारों के साथ बड़ा अच्छा। बहुत सारे लोग पिकनिक करे आप तो अब आपके लिए एक और बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाऊंगी। तो ये जो गाना है ये भी राधा वाला है, तो कृष्णा के लिए ही हम ऐसे गीत आपको सुनाएंगे थोड़े से। तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है, मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। हैव ए सेफ वीकेंड एंड अ ग्रेट वीकेंड। प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, और खुद भी एंजॉय कीजिए, अपने आसपास वालों को भी एंजॉय करवाइएगा, उनकी खुशी का भी जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप अपने आसपास के लोगों की खुशी का ध्यान रखेंगे तो वो सब कितने सारे लोग आपकी खुशी का भी ध्यान रखेंगे। इसी विचार के साथ नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी स्वाद दा पला है। वंडरफुल वीक।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें, और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।

0: है, सो जो हालात जो ने ओह जरूर सुधरन ते चंगे वाले पासे जान। ते एथलेटिक्स कैनेडा ने भी एक खबर जो है सांझी कीती है कि इन्हां दा एक मेंबर जो स्विट्जरलैंड इटली बॉर्डर ते आल्प्स ते माउंटेन रनिंग रिकॉर्ड लई गया सी, एक लेडी मेंबर सी कैली मैक क्रिस्टल, ते ए कैली जो है अपनी एक्सपेडिशन तो लापता है। ते हालांकि काफ़ी लंबे सालों का तजुर्बा जो है कैली रखती है, ते क्लाइम कर रही सी मैटर हॉर्न जो तकरीबन कह सकते हैं कि 4500 मीटर उच्चा जो माउंटेन जो है, ते उस नूं मैं क्लाइम कर रही सी। ते हालांकि काफ़ी तजुर्बा टेक्निकल जो है कैली रखती है, हाई ऑल्टीट्यूड इन्वायरमेंट्स दा रखती है, पर पहली बार नहीं मैटरहॉर्न इसने क्लाइम किया, पहला भी क्लाइम किया पर कोई खबर जो है वो कैली दी फिलहाल जो है नहीं मिल रही। ते एथलेटिक्स कैनेडा ने इस बारे जानकारी अपनी वैबसाइट ते सांझी कीती है। ते चलो अरदास करते हैं कि आने वाले समय दे विच कोई चंगी खबर जो है वो जरूर मिले। सो बीसी दी वसनीक जो है कैली मैक्रिस्टल जो है एथलेटिक्स कैनेडा वालों एक खबर जारी की है कि लापता है। ते जी हुण वेला जो निक्के जी ब्रेक दा हो गया, सो ब्रेक लै लिए जी। प्रोग्राम पंजाबी लहरा रेडियो दे नाल तुसी बिल्कुल बने रहना।
1: 24 घंटे 7 दिन खुला सब्जी मार्केट रेस्टोरेंट एंड ग्रोसरी स्टोर दो लोकेशंस तो सर्व कर रहे ने, सैंडलवुड एंड मैकलॉगलिन 10 लोरमेल गेट, या पहुंचो 10970 ब्रैमली रोड।
2: On September 13th at 10 a.m., join the Brampton Parkinson Canada Superwalk and help make life better for Canadians living with Parkinson's. The walk will start and finish at Susan Fennell Sportsplex in Brampton. With the same strength of spirit people living with Parkinson's demonstrate daily, we will not stop walking until there is a cure. Register or donate at superwalk.ca and make a real difference in the lives of those affected by Parkinson's. Proudly sponsored by CHLO AM 530.

सकते हो स्टील्स ते टॉमकिन दे कोल जी, थोड़े काम की लोकेशन फिर इन्हां दे नाल होनी है ते तुसी जी इन्हां नू कॉल करके तुसी पंजाबी लहरां दा हवाला दो ते तुसी काम बारे जानकारी जो है वो पूरी लो ते जी नाल ही थानू मैं यही भी संदेश दे दवां जी, काम की ऑपरचुनिटी एक होर है ते तुसी फार्म ते इस मौसम दे विच, चलो मौसम हले भी अच्छा है ते तुसी फार्म ते काम करना चाहुंदे हो, ग्रीन हाउसेस दा काम है ते जी गुरजोत जी नू इस काम लई तुसी संपर्क कर सकते हो, नंबर 647-278-5394, 6647-278-5394 जी गुरजोत जी दा यह नंबर है, तुसी इन्हां नू कॉल करो इस काम बारे भी तुसी जानकारी जो है वह जरूर जी लै सकते हो। ते जी इस दे नाल थानू जानकारी जो है हुण, क्योंकि समा थोड़ा ही रह गया ते जांदे जांदे मैं यह जानकारी भी थोड़े तक बिल्कुल पहुँचा देवां कि बेस्ट वैल्यू बिल्डिंग सप्लाईज़ जी स्टील्स ते डिक्सी दे कॉर्नर ते बिल्कुल आ चुके ने, 8005 डिक्सी रोड ब्रैम्पटन दे विच इन्हां दा पता है ते तुसी कंस्ट्रक्शन दा रेनोवेशन दा कोई भी समान तुसी लैणा है ते बेस्ट वैल्यू बिल्डिंग सप्लाईज़ जरूर पहुँचो ते नाल इन्हां दी वैबसाइट www.bestvaluebuildingsupplies.ca ते जाके भी तुसी पूरी जानकारी प्रोडक्ट्स दी प्राइजेस दी जो सारी ही जानकारी है तुसी जरूर लै सकते हो। ते जी नाल ही यह भी जानकारी थोड़े तक असी दे दिए जी कि ग्लोबल कंफर्ट एयर एसी फरनेंस रिपेयर तुसी इन्हां पासों करवाउणा है ते ग्लोबल कंफर्ट एयर फरनेंस ते एसी रिपेयरिंग दे लई तुसी संपर्क तेजपाल जी नू करना है, नंबर 905-790-9080 905-790-9080 ते कॉल हो सकती है जी। सो इस दे नाल जो जाण दा समां है ते जाण वेले एक प्यारा गीत तुहाडे नाल मैं छड चली हाँ ते वीकेंड दियाँ लोंग वीकेंड दियाँ छुट्टियां दियाँ इस प्यारे समें दियाँ थानू सारयां नू ढेर सारियां बेस्ट विशेस, समां जी सारयां दा चंगा ही आवे चंगा ही होवे ते उस परमात्मा दा शुकराना बिल्कुल करदे रहिए। सो एक प्यारा गीत जी थोड़े लिए जाण वेले जरूर छड चली हाँ, उम्मीद करदी हाँ तुसी इंजॉय करोंगे। सो मैनू रुपिंदर कौर नू दिओ इत्थे ही इजाजत अज लई ते अगले हफ्ते मुलाकात होवेगी जी, हंसते वसते रहना, सत श्री अकाल।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: Garnishment, power of sale notice, bank walo paise di mang, unhe hi sanu call karo. Phir to anu koi nahi kar sakega tang. Karza maaf karao. 100% mansik shanti pao. Collection callon to chutkara. Bina vyaj nikkiya nikkiya kishtan. Call karo Canada Consumer Credit Assistance 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
3: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया, क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दंगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दियो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए। देन सडनली तुसी ए कमर्शियल सुन दे।
4: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग। हरजिंदर गिल ते छड़ दवो, तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com, हेल्पिंग यू टू फुलफिल योर रियल एस्टेट प्लान्स।
5: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 6974000188 बार 6474006862 जी मीडिया ग्रुप।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये राजधानी राजधानी राजधानी
0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
2: विजिटर टू कनाडा आउट ऑफ प्रोविंस कवरेज बाय करना चाहते हो या अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ले सुपर वीजा इंश्योरेंस दे बेस्ट रेट्स, बेस्ट प्लान्स अते बेस्ट ऑप्शन बारे या फिर 40-45% दा डिस्काउंट लेना चाहते हो तो हुणे कांटेक्ट करो 6474-0088 6474006862। इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 6474-0088 6474006862। जी मीडिया ग्रुप।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
2: चंगी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत चंगी सलाह नाल होंदी है, ते ऐदां दी सलाह तुसी हर किसी तो नहीं ले सकते। इस करके रीमैक्स गोल्ड रियलिटी दे हरजिंदर गिल नाल अज ही गल करो। चाहे तुसी फर्स्ट टाइम होम बायर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दी भाल विच हो, प्रॉपर्टी बाय और सेल करना चाहुंदे हो, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स विच इन्वेस्टमेंट या लुकिंग फॉर रिटेल यूनिट्स, तां तुसी बिल्कुल ठीक ना सुनिया है। Harjinder Gill, with vast variety of marketing, promotions and showcasing your next hot deal, Harjinder Gill is the name to call at 647-400-6862 or visit teamharjindergill.com, helping you to fulfill your real estate plans.
3: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862 जी मीडिया ग्रुप।
4: दोस्तों स्वागत है तुहाडा एक बार फिर रेडियो रम्स पंजाबी द वीकेंड शो, ते मैं प्रभजीत बोपरे तुहाडा स्वागत करदा जी। इस वेले समा 12:48 हो गए जी, जिथे हर एतवार तुहाडा साडा साथ 2 घंटे का रहिंदा जी, 12 बजे तो लैके 1 बजे तक रेडियो रम्स पंजाबी, 1 to 2 रेडियो नज़रिया तुहाडा साडा साथ हुंदा जी। तो तुसीं जे तुसीं स्टूडियो कोई कॉल करना चाहुंदे हो, कोई लोंग वीकेंड दे रिलेटेड, लेबर डे दे रिलेटेड कोई गल करना चाहुंदे हो, तो स्टूडियो का नंबर है 416-233-7368 ते 416-233-8297। तो दोस्तों अपने शहर के सुनंदा शर्मा का लाइव इन कंसर्ट द विक्टरी टूर 2026 होन जा रहा जी, तो इस दे वास्ते सोलो टूर है जी, उन्हों का इकले ही गाँवगे सुनंदा शर्मा के स्टेज पर रौनक लागे। जिहड़ा एतवार अक्तूबर 18 द ग्रेट द थिएटर एट ग्रेट कनेडियन टोरंटो दे विच होन जा रहा जी, उसके वास्ते टिकटा अवेलेबल ने, तुसीं ticketmaster.ca तो टिकटा खरीद सकते हो, तो जां वधेरे जानकारी लई तुसीं 647-400-6862 Harjinder Gill साहब उन्होंने नंबर है जी। इस दे जे तुसीं कोई स्पॉन्सरशिप तुसीं देना चाहते हो, जां कोई टिकटां दे रिलेटेड कोई गलबात करनी है, तो तुसीं साडे जी मीडिया ग्रुप 647-400-6862 दे उत्ते संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों एक स्पेस ऑफिस स्पेस रेंट के उत्ते अवेलेबल है जी, ट्रेनमेंट ड्राइव के उपर डेयरी एंड डिक्सी का इंटरसैक्शन पैंता जी नीयर वे, तो इस वास्ते मनजीत गिल साहब उन्होंने संपर्क कर सकते हो 416-669-1379। तो गिल साहब होना मनजीत गिल वीर ही 2 बैडरूम की कोंडो अपार्टमेंट वाटरलू यूनिवर्सिटी के एरिए चाहिए वो आस पास, जे कोई वेचना चाहता वीर भैन भरा तो वास्ते मनजीत गिल साहब उन्होंने संपर्क कर सकते हो 416-669-1379। तो दोस्तों मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक तो बाद।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये राजधानी राजधानी राजधानी
0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
2: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 6974000188 6474006862 जी मीडिया ग्रुप।

गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टाडला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादियां उम्मीद करते हैं तुहाडा इदा दिन अच्छा गुजरिया होगा। अगले एक घंटे में तुहाडे लई बहुत सारे पैसे बचा के देने हैं, चाहे ब्रैम्पटन टीवी अपलायंसेस हो या ग्रैंड फर्नीचर हो जिथों

0: सकता कोई रीज।
1: असी हाँ कल्चर ऑफ पंजाब,
2: कल्चर ऑफ पंजाब
0: बेहतरीन पंजाबी एंटरटेनमेंट दी मुंह बोल दी तस्वीर। एशियन कम्युनिटी दा मनपसंद रेडियो शो कल्चर ऑफ पंजाब,
1: तेजी नाल वाज रहे रेडियो शो जिसको पूरे कनाडा ने दिता है अपना प्यार।
0: कल्चर ऑफ पंजाब नाल जुड़ो ते तरक्की दे रस्ते ते अगे वधो। एडवर्टाइजमेंट इंक्वायरीज
1: ट्यून इनटू कल्चर ऑफ पंजाब
0: एंड नो द डिफरेंस।

0: हां जी हरमन जी।
1: अहे हाले तई कोई फर्क नहीं पिया।
0: फर्क जे पै गया दिलां विच नी फिर तू रोवेंगी।
1: मैं क्यों रोऊंगी?
0: ए फर्क नहीं पैना चाहिदा फिर केदे कपड़े धोवेंगी।
1: दिल दा कपड़े ना की सबन।
0: मैं तो रंग दी गल करदा भी भाई चंगा साबण वरत्या करो। हाँ। माड़े साबण ना रंग उड़ जांदा।
1: ओ जेड़ा गुरप्रीत संधा वाले वरतदा छोकरा मारका ओ नहीं वरतना।
0: हाँ जी।
1: अच्छा जी, ये कपड़ियां दे रंग उड़े दा ही नतीजा कि अज इदा दा हो गया।
0: हाँ जी
1: हाँ जी
0: हाँ जी।
1: चलो मैं तुहानू फिर अज एक गल सुनानी आ।
0: दसो।
1: कहंदे कि जेड़ियां बादल सरकार दियां नीतियां ना।
0: बादल सरकार दियां नीतियां पहला मैनू ये दसो भी है केड़ियां।
1: चलो जेड़ियां भी आ।
0: ना इदा थोड़ा हुंदा, जेड़ियां केड़ियां दा की मतलब है?
1: देखो उन्होंने
0: समझाओ ना पहला।
1: की समझावा
0: भाई? साडे पल्ले ता पाओ।
1: की
0: पाओ? केड़ियां नीतियां ने
1: उन्होंने जो क्या है पहला वो गल तो सुन ला। तू
0: सुन लांगे पहला गल ता दसो भी नीति केड़ी है।
1: मेनू नहीं पता।
0: अच्छा
1: सनी
0: देओल कोलों क्यों मशहूरी करानी है?
1: क्यों?
0: वो इस करके कहते भी पंजाब च पानी तो थले चली गई।
1: अच्छा।
0: नलके पानी कढ़ देनी नाले नलके पटा लांगे नाले प्रचार करा लांगे।
1: एक होर भी है लिस्ट च।
0: ओदी लिस्ट ता फेसना हो पहला गाना सुनना ही नहीं तो मैं रो पैना जी।

0: राम जी, मेरा बिजनेस नहीं है चलता। बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने, कोई गल नहीं बनती। बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
1: ओए मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? देव ताकले नु कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी एड चला। भाई स्पेशल पैकेज ने उन्हां कोल, फोन कर 416-677-0609 416-677-0609।
0: हां जी मैडम जी, बोलदे नहीं जी तुसी?
2: बोलदी
0: खेडदा रहा होगा जी, मतलब पापा घर आया होगा, कहा होना भी किधर गया हो। मां ने कहता होना भी हां मतलब बाहर खेडदा, पापे ने लिया के फिर अंदर रखता होना, अंदरों फिर रोन की आवाज आई होनी, फिर मां ने पूछा होना
2: की
0: कुट लिया।
2: अच्छा ओ कुट लिया नहीं है, ओ कुट लिया या
0: हां कुट लिया या
2: हां तेरे अपने लॉजिक हर था दे अपनी
0: बोलना ही है, जमे मर्जी करो भी उन्हें ता पूछना है भी कुट लिया।
2: काका तू ओ दे ना ना ते ना जा, जिन्नी ओनु नॉलेज है ना
0: ओ मैं ओही कहना भी ओनु नॉलेज ता फिर आपे ही आई नहीं सी जी।
2: क्यों
0: ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਹੈ ਵਿਗੜਿਆ ਦੇਗੜਿਆਂ ਦਾ,
2: ਤੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ।
0: ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਤਾ।
2: ਹਾਂ ਦੇਤਾ
0: ਬਈ, ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ।
2: ਮਤਲਬ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ 10 ਲੱਖ ਲੈਣਾ, ਤੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਡੰਡਾ ਘੁਮਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ।
0: ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਜੂ।
2: ਕੀ ਬਦਲ ਜੂ?
0: ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਹੁਣ।
2: ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ?
0: ਆਹੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੈ, ਭਾਪੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਕੁੱਚੂ ਕੁੱਚੂ ਕੁੱਚੂ ਕੁੱਚੂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਪਾਪਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ।

0: 530. CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca.
1: डेटा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
2: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
3: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तो सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते।
1: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे। हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381।
4: येलो टायर सेंटर ते तुहानू ट्रकां और ट्रेलां दे हर तरह दे यूज ते ब्रांड न्यू टायर मिलणगे ते व्हील अलाइनमेंट बैलेंस न्यू टेक मशीनां ने कीता जांदा है।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में